0: lady?
1: What should it be not to this?
0: If you over at a clinical device,
2: मौज करने तो लगती नहीं करने और इसे मलाई भिड़ाऊं खोजने

0: एक्सरे प्रयोगशाला परीक्षण फार्मेसी परिवार नियोजन तथा विशेष छुटका साथ खोलबडी चेकअप सेवा समेत प्रदान गरिन्छ।
1: बिरामी जाँच हुने समय प्रत्येक दिन बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म। थप जानकारीका लागि नेशनल बाथरोग सेन्टर तुलसीपुर 5 कल लाइन बीपी चोक दान फोन नम्बर 082-5201-103 र मोबाइल नम्बर 98-577-80-103।
0: नेशनल बाथरोग सेन्टर, स्वास्थ्य तपाईँको सेवा हाम्रो।

बार गुहार बदन ध्यान कतलाए पड़ल तिरछे नजर मैं घायल करल अख नजर मोर माँ चलाई तो है तू बदन तुहार आँख कतल।